0: क्लॉकवाइज एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: वाराणसी 2083 को शुभ अवसर में हमारा संपूर्ण श्रोता शुभ चिंतक विज्ञापन दाता साझेदार संचार गृह सहित संपूर्ण दाजू भाई तथा दीदी बहनी योतार सुखमय जीवन र प्रगति का लागि प्रेरणा प्रदान गर्न सक्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
2: गोरखा नगरपालिका छ।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: वाराणसी 2083 को शुभ अवसर में हमारा संपूर्ण श्रोता शुभ चिंतक विज्ञापन दाता साझेदार संचार गृह सहित संपूर्ण दाजू भाई तथा दीदी बहनी योतार सुखमय जीवन र प्रगति का लागि प्रेरणा प्रदान गर्न सक्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज गोरखा नगरपालिका छ।

यही काफी है, हर एक मौसम भी अपना लगे। फिर इश्क में ये दिल कहे, अब और कुछ भी ना चाहिए।

सम्पर्क मनकामना पार्टी प्यालेस, आबु खैरेनी तल्लो बजार, शिव मन्दिर नजिकै। फोन नम्बर 0965 40 0 49, मोबाइल नम्बर 98 560 40 4 99 र 98 560 30 0 82।

0: 방은 문제예요. 국회의원이 의미하는 거예요.
1: 아니 यहाँ तल लडेर बसिरहेर त मैले उठाएर ल्याएको
0: छैन
1: अनि म लगिदिइहाल्छु नि
0: म त फ्री भएर गई होली भनेर यहाँ रिसा

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: वाराणसी 2083 को शुभ अवसर में हमारा संपूर्ण श्रोता शुभ चिंतक विज्ञापन दाता साझेदार संचार गृह सहित संपूर्ण दाजू भाई तथा दीदी बहनी युवतार सुखमय जीवन र प्रगति का लागि प्रेरणा प्रदान गर्न सक्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: ट्वाइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज गोरखा नगरपालिका छ।

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: वर्ष 2083 को शुभ अवसर में हमारा संपूर्ण श्रोता शुभ चिंतक विज्ञापन दाता साझेदार संचार गृह सहित संपूर्ण दाजु भाई तथा दीदी बहनी योचार सुखमय जीवन र प्रगति का लागि प्रेरणा प्रदान गर्नु सँगै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: टॉयस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज गोरखा नगरपालिका छ।